जब ये गहे विपरन की रीत मैं ना करूं इनकी प्रतीत। जदू ये खालसा पंडतां दिया रीतां ते तुर पिया भाव अपने असूलां तो जदों ये पिछे हट गया ते फिर ए दे विच मेरा तेज नहीं रहेगा, फिर इन्हां दा राह वखरा ते मेरा राह वखरा होगा। मैं खालसे दे विच उदों तक हां जदों तक खालसा मेरे असूलां ते रहेगा, ते जे इन्हां दा असूल कोई नहीं ते फिर ये मेरे कोई नहीं। आखो सतनाम श्री, क्योंकि गुरु साहब जी जो कहते हैं पहला ओ ते फिर रहतनामे संसार दे विच पीर पैगंबर ते बड़े हुए, पीर पीर रहे, सेवक सेवक, भगवान भगवान रहे, पुजारी पुजारी, पर गुरु नानक दे कार गुरु चेले बन गए ते चेले गुरु बन गए। आखो सतनाम श्री वाहे। और इत्थों तक

खालसे दे विच मैं आप वसदा। शब्द बहुत लंबा है पर इतना समा नहीं कि शब्द पूरे पूरे पढ़िए। ऐसे शब्द विच कह देता इस तो वड्डी होर कीड़ी वड्याई हो सकती।

मरूं जे रस ना पाऊं, मेरे शरीर ते जिन्ने रोम ने एक शरीर ते करोड़ा रोम होंदे ने। जिहड़ा साडा शरीर है करोड़ा रोम होंदे हन हर बंदे दे शरीर ते। ते साहिब जी कहिंदे ने इह जिहड़े मेरे शरीर दे रोम ने करोड़ा रोम, ये सारे जीव बन जाए। रोम रोम जे रसना पाओ तदप खालसा जस तैगा। इतनी वड्याई दीती, मेरे शरीर ते जिन्ने रोम ने ये सारे जीव बन जाए ते इना करोड़ा जीवां दे नाल मैं खालसे दा जस गावा। आखो सतनाम श्री, ये वड्याई दे रहे।

दिग्गज सिंह ने पूछया, महाराज तुसी कहंदे हो सब कुछ खालसा है, जे सारा कुछ ही खालसा हो गया ते फिर तुसी ते गुरु साहिब जी जवाब

इतनी बड़ियाई दी थी और इतों तक चले गए। कहन लगे खालसा मेरी जान की जान। और इस तू पहली पंक्ति खालसा मेरो पिंड प्राण, खालसा मेरी जान की जान। पिंड कहंदे ने शरीर नू, खालसा मेरा शरीर है, खालसा मेरो पिंड प्राण, और खालसा मेरे प्राण है, और खालसा मेरी जान है। खालसा मेरा मां बाप है, खालसा मेरे भैन भरा है, खालसा मेरे रिश्तेदार, और खालसा मेरा सज्जन मित्र है। और इथों तक कह दिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का सारा इतिहास पढ़िए, उन्हें किधरे कसम नहीं खाधी। पर जद खालसे की गल आई तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे वास्ते एक कसम खाधी। की कहते हैं, पार ब्रह्म गुरु नानक साखी। मैं पार ब्रह्म गुरु नानक नु साखी रूप जान के ये कहना कि खालसे विच अकाल पुरख विच ते मेरे विच कोई फर्क नहीं।

संसार दे जिया उते कलगिया वाले पातशाह ने अज दा दिहाड़ा पवित्र दिहाड़ा मनांदिया होया खालसा मेरो रूप है खास खालसे में हो करो निवास। पातशाह फरमान करते ने ये जो खालसा है ये मेरा ही रूप है खालसे मैं हूं करो निवास मैं इस खालसे विच ही निवास करदा हां। जो नीच जातां दे अखोती हन गरीब हन मजलूम हन कलगियां वाले पातशाह ने बख्शिशां कीतियां बड़ियां रहमतां कीतियां दर्जा दिता अपना रूप भी बना लिया। सो आओ सात संगत जीओ अज के दिहाड़े नूं पवित्र जानदिया होया आपां सारे जाने

सारे जाने ओदे चरणा दे नाल ध्यान लाइए, ध्यान नू जोड़िए ते सरबत दा भला मंगिए। ते पातशाह फरमान करदे हन।

जिन्ना चिर यह परिपूर्ण परमात्मा अकाल पुरख के चरणों नाल जुड़िया है, मेरा खालसा ये मेरा ही रूप है। पर जदों ये भरमां विच वहमां विच पै गया, गुगे जठेरे मनन लग पिया, मड़ी मसाणी मनन लग पिया, इहदे मन विच द्वेष आ गई, इहनूं इह पता लग गया।

ये चार कुरैतां छड़ देन ते पांच ककारां विच पक्के हो जान, रैत रखन, वंड के छकन।

बहुत प्राचीन मधुर अते परम रागां विचों इक है। इस विच ऋषभ अते धैवत अति कोमल अते होर सुर शुद्ध लगदे हन। वाद्य स्वर धैवत अते संवाद ऋषभ है, इस दे आरोह अवरोह विच सत सुर लगदे हन। अमृत वेले तो पौ पटाले दे समय दौरान यह राग गाया जाता है। इस राग की मधुरता ऋषभ अते धैवत दे उचित प्रयोग ते निर्भर है। भैरो का वातावरण अति सुहावना हुंदा है, प्यार उपजाऊ है। इस राग विच भगत प्रहलाद जी की कथा का जिक्र गुरु साहब ने विस्तार नाल कीता है, जिसने हरनाक्ष का हंकार भन्निया। गुरु की करणी बारे फरमान है, मृग पकड़े बिन घोर हथियार। इत्थे ही नामदेव जी की सूरमताई का भी जिक्र है, जिन्हां मां नूं कह दिता सी ना हो तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माए। बीबी जसविंदर कौर जी पासों शब्द सरवण करो, गुर जैसा नाही को देव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। अते दूजे शब्द का गायन कर रहे हैं भाई रविंदर सिंह जी। शब्द है माथे तिलक हथ माला बाना। पहला शब्द गुर जैसा नाही को देव।

पावन शब्द धन गुरु नानक देव जी महाराज ने तुखारी राग विच उच्चारण किया है। तुखारी संत महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सावन सरसमना घनवर सैरत आए, मैं मन तन सह पावे पिर परदेस सदाए। पिर घर नहीं आवे मरिए हावे, दामन चमक डराए। सेज अकेली खरी दुहेली, मरन भया दुख माए। हर बिन नींद भूख कहो कैसी, कापड़ तन ना सुखावे। नानक सा सुहागण कंती, पिर कै अंक समाए।

साफ रह। खालसा धर्म नहीं है, खालसा है पंथ। ते पंथ दा मतलब है राह, ते खालस दा मतलब है पवित्र। पवित्र राह दे उपर चलन वाला कोई महापुरख, कोई संत जन, कोई जग्यासु, जिसनु पूरे गुरु की कृपा द्वारा इस राह दी सोझी हो जाए। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी ने इस दिया कुछ कुछ शर्तां दसियां, नियम दसे हन। वही गुरसिख दी डेफिनेशन की है, वो लिखदे ने भी गुरसिख भलके उठ कर अमृत वेले सरना वंदा, इशनान करना, गुरु की बाणी दा जाप करना, फिर सत संगत विच आके गुरबाणी दा कीर्तन श्रवण करना, सेवा करनी, गुरसिख साध संगत दी सेवा करनी, दसवंध गुरु दी समर्पित कर देना, ते आपा भी गुरु दी समर्पित कर देना। साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह कहंदे हन, जेड़ा जागत जोत नाल जुड़िया होया है, जागदी जोत नूं हमेशा जपे, चिरंकाल सदीव काल हिरदे दे अंदर उस नूं धारण करे, उस नूं खालसा कहा जांदा। ओ खालस हो जांदा, शुद्ध ते नरोल हो जांदा, जेड़ा संसार दे वहमा भरमा तों दूर हो जांदा। व्रत गोर मड़ी मट भूल ना माने, जेड़ा इन्हां चीजां नूं ना मनदा होवे, जेड़ा तीर्थ दान दया तप संजम इन्हां नूं एक अकाल पुरख तों बगैर ना मनदा होवे, क्योंकि एक अकाल पुरख महाराज दे सिमरन तो बगैर बाकी दियां चीजां सारियां अधूरियां हन। ते साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह ने खालसे दी डेफिनेशन उपमा कीती है, कहिंदे खालसा मेरा ही रूप है ते मैं इस दे अंदर निवास करदा हां। जेड़ा खालस शुद्ध स्वरूप नजर आउंदा होवे, गरीब नवाज सचे पातशाह कहिंदे मैं उस दे चरणा दी खाक नूं लोड़दा। धन गुरु रामदास महाराज दा भी इही वाक, जन नानक धूड़ मंगे तिस गुर सिख की,

सतगुरु कोट पेंडा आगे हुए लेत हैं. यू टेक वन स्टेप टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, वाहिगुरु परमात्मा. टेक वन स्टेप टूवर्ड्स हिम एंड ही टेक्स अ मिलियन स्टेप्स टूवर्ड्स यू. यू डू सेवा इन हिज नेम, डू चैरिटी इन हिज नेम एंड ही रिवॉर्ड्स यू 1,000-fold. You repeat his name again and again, and he will always be with you. Nanak, Bhagat Ravdas says, I repeat his name again and again, and I never get tired of repeating his name. Satgur Dayanidh, Mehma Agad Bodh, Namo, Namo, Namo, Namo, Neth, Neth, Neth hai.

गुरु नानक सच्चे पातशाह कलयुग दे महान अवतार उन्हां दी वड्याई भाई साहब भाई गुरदास जी सिख धर्म दे महान विद्वान उन्हां ने अपनी कलम नाल कीती है। बड़ा सुंदर ए प्रसंग गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी सिद्धा नाल ज्ञान चर्चा विचारधारा गोष्ठ जिथे भी कोई रब तू भुलिया इंसान गुरु नानक बाबा नू नजर आया सतगुरु उथे आप पुजे। संसार दी रीति है भई महापुरश वली पीर पैगंबर उन्हां कोल दुनिया जांदी है पर गुरु नानक सच्चा पातशाह आप लोगां कोल जांदे रहे। बाबा काशी गए बनारस गए हरिद्वार गए गया जी गए क्यों गए भई लोगां दा तीर्थां ते इकट्ठ हुंदा सी ते बाबा जी उथे अपने विचार सुणांदे सन लोगां नूं सीधे मार्ग ते लांदे सन। बटाले दे लागे बिल्कुल नजदीक क्योंकि बटाले विच गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दे सौरा परिवार सी ते लागे अचल बटाला है उस सिद्धां दा बहुत वड्डा गढ़ शिवरात्रि दा मेला लगा होया सी ते गुरु नानक ने सुनहरी मौका तकिया कहण लगे मर्दाने आ चल गरीब नवाज पातशाह सत बचन भाई साहब भाई गुरदास जी

लगी बरसन लक्ष्मी। बाबे दा आना सुन के सारे लोग उधर नू आ गए जिधर गरीब नवाज पातशाह बैठे सन। लगी बरसन।

नानक आके भंगरना। बाबे ने जवाब दिता, हे भंगरनाथ, तेरे गुरु ने तेनू मत नहीं दिती। गुरु मां हुंदा ना,

फिर उन्हों के घर मंगन जाई, बिन दिते किच हाथ न आई। ए सुन बचन जुगीसरा, भाई साहब कहते हूं झगड़ा कर लगे ने, गुरु नानक नु डराउन लगे ने, अपनी शक्तियां दा प्रभाव पाती।

करके उड़न पंखी। भाई साहब कहंदे ने कोई उड़न वाला पंछी बन रहा है, कोई बघियाड़ बन रहा है, कोई चीता बन रहा है, कोई शेर बन रहा है। एक पर कर करके

पर चढ़ पए। रिधियां सिद्धियां दे मालक बने बैठे सन, गुरु नानक नु डरा रहे सन। भाई गुरदास कह रहे हैं, सिद्ध तंत्र

बाबा जी जिस वेले मुल्तान गए ना ते उथे दे पीरां नूं पता लगा के वड्डा पीर आया इहदे अगे साडी दाल नहीं गलनी ते उहनां ने अपने एक सेवक नूं अपने चेले नूं एक दुध दा छन्ना भर के भेजिया जिहदा मतलब सी भी पीरीपुर मुल्तान इत्थे तेरी लोड़ ही नहीं इहदे अगे पीरां नाल भरिया पिया तेरी

0: बिन कुंभ न हो। ज्ञान का बतावन रहे गुरबिन ज्ञान न हो। ओ गुरबिन ज्ञान न हो।
1: बाबा जी थोड़ी इस छवी के आसरे साडा पेंडा कटिया जाता है।
2: आसरा उस आधार का मैं देख सेवादार हाँ।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया
2: अब मोरे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असी भी मन चल लग रहे थोड़े को हजारों यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी दी छपड़ी आदि कंडे ते बेरी दा दरख्त ते बेरी ते कां बैठदे ने।
2: छपड़ियां ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इक्को ही होएगी जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़दे जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाल ही आवाज आ रही सी
4: कागू हंस करे।
2: कागू हंस करे। कागू हंस कर ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उथे गुरु अमरदास जी का दरबार है। गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास।
2: हां बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है। उन्होंने दर्शन करदिया ही थोड़े पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल लै जाणगे जिस मंजिल थोड़े दिल तांगे।
4: कितनी दूर है गोविंदवाल।
2: एथो थोड़ी दूर दरिया का पत्थर है उथे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोविंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असी चलने हैं।
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।
0: उठ परिदायुज सार सुबह नवाज गुजार जो से साई नानिले सो सिर कफल उतार। जो सिर साई नानिले सो सिर की देखाए उन्नी पैठ जलाए बालन संदे थाए। बालन संदे
5: थाए। ओ साथ जी की गल है पहला तुसी ने कहा रिफत
4: असी किस तरह जानते सोचदियां पहले पूछ लिया हुंदा।
5: की पूछना सी।
4: सारे मुसाफिरों ने तुहाडी सेवा च कुछ ना कुछ भेंट कीता है पर असी साडे कोल ना दिल चोल ना धर्म ना तमड़ा।
5: ओ चलिए पहले मैं कोई कम कमाइया नहीं तो नहीं करता। मैं तो गुरु के दर्शन आई हूं संगतां की सेवा करके अपना जन्म सफल कर रहा।
4: फिर भी तुहाडियां लोड़ां।
5: मेरिया लोड़ां। मेरिया लोड़ां तो खुदावंद पूरियां करता है तो होर मैं चाहिए भी की जो कुछ मैं लोग दे जाते हैं जाके गुरु के दरबार चढ़ा दिना। दिन वेले बेड़ी चढ़ा तो राति लंगर चो ढिड भर के बाहर थड़े दसो जाना। मैं उगन हरा कोगन पले नहीं।
4: तन हो तुसी।
5: तन ते मैं नहीं पैना। तन तो गुरु महाराज है जरा सब नू अपनी मिठी बाणी का अमृत पिलांदा है। उहदे दर ते जाओगे तो उन्हू कहना जिन्हें सानू ए सागर पार कराया उस अवगन हरे नू इस पाव सागर तो पार उतारो।

प्रगटे नानक राए, सब सिखन को सुख दे जैते भय सहाय। आज बेदियां दी कुल विच

मोदी खाना छोड़ दिता। दौलत खान ने बड़े मिन्नत की थी, आख्या होण नहीं लेना। उथो वे ही नदी ते आए, बाला नाल है। साहब जी ने आख्या, बालिया तू साडे बस्तरां दा ध्यान रख, ते असी वे ही इशना

जे परमेश्वर दा नाम होया तेरे कोल ता उना कर्मा कांडा दा वही मुल पैणे। सात सगत बोलो श्री जिवें एके तो बिना उना सिफरां दी कोई मुल नहीं, इसे तरह एक प्रभु दे नाम तो बिना जो कुछ मर्जी करदा रह कदे थाए नहीं पवेगा तेरा। गुरु अर्जन देव पातशाह बाणी विच कहंदे हन, प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका